स्वर टंकामाया श्रेष्ठ सुमी श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखरिन इस चीज में केवल नाच्ने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।